0: Du bist ein Job, Assas, du Assas, Hebises, Nadet, Hose, Bises, Bole, Sony Hall, Sassier Karl.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
2: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दंदे ने शमी पठल
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कभू झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत सवेर, चढ़ती कला वाली सवेर ते खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधु। पंजाब की धरती तो निरपक्ष निडर आवाज़ रमेश हुशियारपुर जी साडे नाल जुड़ चुके हैं, तो सुनने वाले सारे स्रोतों नूं प्यार सत्कार अदाब सत श्री अकाल ते नमस्कार। सो स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7:02 हो चुके हैं, थोड़ा साडा साथ हुण तो लैके 8 बजे तक बनिया रहना। उम्मीद करते हैं तुसीं ठीक ठाक होंगे, अज की खूबसूरत सवेर नूं तुसीं इंजॉय कर रहे होंगे, अकाल पुरख का शुक्र कर रहे होंगे। तो 905-673-3337 नाल दी नाल स्टूडियो का नंबर दे दिए, 905-673-3337 तुहाडियां गल्लां बातां रमेश जी तक बहुत शॉर्ट ते सीमित शब्दों में पहुँचन ताकि रमेश जी उन्हों का जवाब दे पाउण। खबरां दे नाल सांझ पाउणे आ पंजाब दी धरती तों रमेश हुशियारपुर जी साडे नाल जुड़े हुए हैं, सत श्री अकाल कहिंदे आ जी आयां नूं कहिंदे आ। अज दी नवीं सवेर नवें प्रोग्राम नवीं खबरां दे नाल रमेश जी सत श्री अकाल, तुहाडा स्वागत है बहुत बहुत स्टूडियो दे विच, की हाल चाल है जी? रमेश जी सत श्री अकाल जी, थोड़ी आवाज़ आई थिंक पहुँच रही है, मेरे तक थोड़ी आवाज़ नहीं पहुँच रही। ओके रमेश जी माइक्रोफोन, ओके 905-673-3337 ओके जी सत श्री अकाल रमेश जी, मेरी आवाज़ थोड़े तक पहुँच रही है जी? आई थिंक कुछ टेक्निकल इशूज आ, बस गए तो आए, लैट मी चैक 905-673-3337 जुड़े हुए पंजाबी लहरां दे नाल।
1: ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਲਈ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਕੰਕਰੀਟ ਡਰਾਈਵਵੇ, ਪੈਟੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 416-902-9293 ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? रमेश जी सत श्री अकाल जी, आई थिंक मेरी आवाज़ थोड़े तक पहुँच नहीं रही। ओके मैं थोड़ा जहा टेक्निकल रीफ्रेश करके आया, बस गए तो आए 905-673-3337 905-673-3337 बस एक सैकेंड मैं थोड़ा जहा रीफ्रेश कर ला 905-673-3337।

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 90545126000.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Rupert Airport and Derry, the intersection Rupert. Tusi cheap flight tickets si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Jan tusi visa services si pal de vecho, puri family vacation Rupert jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Rupert. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
4: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
5: 1 6 5 7 0 0 1 5 7। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
8: विमला विलेज ला विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा, विमला विलेज ला विलेज, विमला विलेज ला विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

जुलाई तक है कैनेडा डे स्पेशल। लेडीज सूट नॉन ब्राइडल सूट ते लहंगे एक लो ते दूजा 30% डिस्काउंट ते। वाह ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਕਸਟਮ ਕੋਈ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵੈਸਟ ਬਲੇਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਮੋਰ ਸੇਵ ਮੋਰ ਸੌ ਡਾਲਰ ਖਰਚੋ $10 ਔਫ 200 ਖਰਚੋ $20 ਔਫ 300 ਖਰਚੋ $30 ਔਫ 400 ਖਰਚੋ $40 ਔਫ ਅਤੇ 500 ਖਰਚੋ $50 ਔਫ 1000 ਖਰਚੋ $100 ਔਫ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਕੰਬਲ ਕਿਲਟ ਕੰਫਰਟਰ ਸੈੱਟ ਦੋ ਲਓ ਇੱਕ ਫਰੀ। सो फैशन आई क्यू एयरपोर्ट डेरी क्वीन कैनेडी मकवीन मेफील्ड 905-453-2225 फैशन आई क्यू से तुसी जरूर संपर्क करो ते थोड़े लिए बिल्कुल हाजिर है फैशन आई क्यू की टीम। सो स्टूडियो च गलबात हो रही है नंबर है अपना 905-673-3337 905-673-3337 3337